कास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रीकल्चर र बीबीएससी एण्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टरमा भर्ना खुल्यो। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी इकास्ट किर्तिपुर काठमाडौँ। फोन 01-590-61-89, मोबाइल 97-72-540-89।